0: हेलो नमस्कार। हेलो, हाँ
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, के बोल सन?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: अच्छा, कैसे भाई?
1: बस बढ़िया है, अभी मौसम साफ है और
0: हाँ
1: अब सेब सेब तैयार होने वाले।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, मौसम तो बहुत सुहाना है। और फरमाइश कीजिए, कौन सा मूवी?
1: क्योंकि मूवी था टाइटल ट्रैक में।
0: अच्छा, क्यों के? अच्छा,
1: जी जी
0: जा रहा है, ठीक
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल,
0: नमस्ते।
1: धन्यवाद।

0: हाँ जी भगवान जी, तो कैसे हो?
1: ऐसा बहुत बढ़िया है। बरसात नहीं हो रही, हफ्ता हो गया सर। हमारी
0: और फरमाइश कीजिए, कौन से गाना का बोल सुनो
1: इस बार
0: आपको?
1: प्रेम का नाम है। प्रेम पहले ससुराल बारे के बोले, तुम लोग के बारे में सभी दोस्तों को डेलीकेशन आएगा सर, आपको भी।
0: अच्छा, क्या धोखा दिया है कि आपने?
1: नहीं, धोखा नहीं दिया सर, गीत अच्छा लगता है मतलब।
0: ओ अच्छा, तो अच्छा, तो कभी जाते हैं क्या ससुराल?
1: जी सर, जाते हैं
0: हाँ,
1: कभी
0: जाना तो
1: जाते
0: पड़ते हैं ना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा ना।
1: हैं जी सर, मैं जाना
0: हाँ,
1: जरूर नहीं है।
0: एक गलती मत,
1: जी
0: हाँ एक गलती मत कीजिए और गाना सुन लीजिए। नमस्ते।
1: जी धन्यवाद।